0: समयको ख्याल राखौं। 6 बज्यो।
1: खरो विषयमा तरो बहस, नेपाली बहस।
2: यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ।
3: ग्लोबल आइमी बैंक, सबैका लागि बैंक।
4: डिसोम फाइबर नेट।

0: हाम्रो विषयमा तारो बहस नेपाली बहस यस नेपाली बहस का साथमा प्रीति तयारी चाउचाउ
1: ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक
2: डिशोम फाइबरनेट
3: यतिखेर हाम्रो बेसमा नेकपा

0: FM 94.2 समुदाय को आवाज।
1: ए बहिनी, घर त चिटिक्कै बनाएछौ हैन? यति राम्रो फर्नीचर को सामान कहाँबाट ल्यायौ?
2: कहाँबाट ल्याउनु नि दाई, हाम्रै व्यासचर किसान हार्डवेयर को पछाडि पट्टि रहेको आरती काष्ठ उद्योगबाट ल्याएकी नि।
1: हजुर, हामी कहाँ स्टील को दराज, कुर्सी, टेबल, साथै काठ को सोफा, दराज, पलाङ, पर्दा, कार्पेट, विवाह को सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्य में बिक्री गरिन्छ।

0: तू अभी तक रेडी नहीं हुई?
1: क्या फायदा, वो तो आ ही नहीं रहा है।
0: तू अपने बेस्ट फ्रेंड के शादी में ऐसे जाएगी? खुश हो जा, वो आ रहा है और तेरे लिए एक सरप्राइज है। तू झूठ बोल रही है।
1: सच्ची।
0: अब मैं दिखाती हूँ उसे सरप्राइज क्या होता है, देखती जा।

0: अनि तयो कागज केमै छि वा
1: अ झिल्काई
0: के पर्सनल नम्बर ब्लक लै वदि
1: पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनीयो टेलिकमर बे अफिसर याइर ब्लक लै र खलखाई
0: अनि बैंगरी
1: बैंगरी
0: अ
1: चढ चाहिँ तली लल्पर्दि
0: चमलल पति न आफै न मोबाइल नम्बर फेर दिया बदेर ब्लक तयाई विषय आफै न बैंक दे बिनी जानकारी पिन परिम दे आफै न बैंक खातै न जानकारी अरुइन योरी थोनिप दक्या सचेत तल परिम
1: सतर्क तना ठगी तब दक्या जोगिना
2: सिद्धार्थ बैंक दक्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई

0: ओली एफएम 94.2 समुदाय को आवाज।
1: ए बहिनी, घर त चिटिक्कै बनाएछौ हैन? यति राम्रो फर्नीचर को सामान कहाँबाट ल्यायौ?
2: कहाँबाट ल्याउनु नि दाई, हाम्रै व्यासचार किसान हार्डवेयर को पछाडी पट्टी रहेको आरती काष्ठ उद्योगबाट ल्याएकी नि।
1: हजुर, हामी कहाँ स्टील को दराज, कुर्सी, टेबल, साथै काठ को सोफा, दराज, पलांग, पर्दा, कार्पेट, विवाह को सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्य में बिक्री गरिन्छ। आरती काष्ठ उद्योग,
3: ब्यास 4 मेन रोड, दमौली तनहुँ।
1: प्रोप्राइटर विष्णु कुमार श्रेष्ठ। फोन 98 16 16 13 26, 98 4 63 056 05, 98 19 11 36 27, 65 65 025।

दमौली डायरी में मंदिरा छिटाई को नमस्कार। सुरु में समाचार का प्रमुख शीर्षक। तनहुमा लोपनमुख नौ प्रजाति का गिद्ध को पुनरागमन। चुड़का नाच मार्फत मौलिक पहचान जोगाउँदै भुजेल समुदाय। विपदसँग जुध्न उद्धार टोलीको तयारी। र इरानको सर्वोच्च नेता खामेनीको अन्त्येष्टि आगामी जुलाई 4 देखि सुरु हुने।